ठोक ठोकने दू दू न रोदा छिर छिल बल लावन जे हुदो ही न आता था सो बासो शाओ हाशा नॉल हॉल गुए बलवा सुंद यंदुर कंची मोगी हली नुई सुद सुंद यं जांगजी लंगी फूलुंग बत्तिं गोर बंगुनी तागा वलात शाओ हाशा नाग अलस क्वशंगा जीरी नुदुर उंदर तावर्षी इधर चौसा दुजी बोसु शाओ हाशा ने ओलानु उंदर दुंदर ऐशु है के नी यक्षु जो जान अंचका सुरलग यह आवर गोले धल्दान आलबन शिरगी उंगिंग गाजरे बोल गाज बालिया मरने स्काजे ओल ने आरुब्रोर निखतला दुज बसु शाव हाशने चू है ना थाल बरम बाल बला छिरग बो बोल बाल मार शिरग तब गाजरी धल्दान थाबन धम्मई शिरगी के दागा को शाव हाशने चू है थे कुन उंचिगे